0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास।

आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

अरे भाई, कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: कूल सॉन्ग।

0: क्या छोड़े तूने?
1: जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: हेलो नमस्कार,
3: मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओले।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
4: Hey, this is Ileana De Cruz.
5: This is me, Hrithik Roshan.
6: Hi, I'm Alia Bhatt.
7: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009 1063 और 3082 1063।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पे।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Doha's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Song. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: cool song.
4: Hey!

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਓਵਰ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: काम किया छोड़े तूने
1: जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है, सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Say what?

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhur.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan, and you're listening to

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

चार दोस्तों के बीच में एक नॉर्मल साइज पिज्जा इतनी जल्दी खत्म नहीं होता जितनी जल्दी हमारा वीकेंड खत्म हो जाता है. देखो अभी अभी तो शुरू हुआ था और अभी चार भी बज गए. हाँ जी वेलकम, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ओलिफ पर. शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की फुल टू बातें होंगी विथ अ पिंच ऑफ यू नो तड़का ऑफ फन मस्ती जोक्स एंड मजा जस्ट बिकॉज ऑफ योर कशिश. सो देखिए यार, आपके वीकेंड को और ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए और टेक्नोलॉजिकली आपको साउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेकटॉक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम फन मस्ती मजा तो करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है ये भी जानेंगे. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इसे इंजॉय कीजिए. बाकी फिर दो घंटे तो हमें बात ही करनी है टेक्नोलॉजी के बारे में. सो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपका वीकेंड कैसा जा रहा है 3311063 पर मुझे मैसेज करके ये गाना इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

अब देखिए महंगाई से जो है सिर्फ आप और मैं नहीं परेशान है बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी परेशान है। हाँ जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर। मैं हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। एंड इस वीकेंड पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म यानी अमेजोन के बारे में जो है हमें बात कर लेनी चाहिए। सो देखिए नविडा के एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स और चिप्स पे जो है डिपेंडेंसी अपनी खत्म करने के लिए अमेजोन जो है अब इन हाउस एआई चिप्स जो है वो डिजाइन कर रहा है। अब देखिए इन कस्टम चिप्स से के आने के वजह से जो है आने वाले समय में अमेजोन की इको और फायर टीवी जैसे जितने भी कंज्यूमर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा और इनकी जो प्राइस है वो हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो यानी आने वाले टाइम पे अमेज़न के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं थोड़े से कम प्राइसेस पे मिल सकते हैं। अब आप बताइए देखो कि आप जो है यहाँ पर अपनी बजटिंग कर रहे हैं महीने की शुरुआत में एंड कंपनीज भी अपनी बजटिंग कर रही हैं। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। आकर जरा व्हाट्सएप की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड. क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न. अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो देयर इज मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

आजकल के टाइम में लोगों को इस बात की फिक्र नहीं होती, इस बात का टेंशन नहीं होता कि उनका करियर में क्या होगा या कोई जो है उनका क्रेडिट तो नहीं चुरा लेगा, बल्कि इस बात का डर रहता है कि कहीं लोग उनसे उनका यूजर नेम तो नहीं चुरा लेंगे। जल्दी जल्दी यूजर नेम रख लेते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर इस वीकेंड को और ज्यादा स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करके, लेकिन थोड़े से यू नो फन एलिमेंट के साथ। सो अब देखिए, हम सबको ये बात पता है कि व्हाट्सएप ने जो है एक नया फीचर रोल आउट किया था, जहाँ पर अब आपको नंबर शेयर नहीं करना पड़ेगा किसी से अपना, आप यूजर नेम जो है अपना वो रजिस्टर कर सकते हैं, उस यूजर नेम से ही आपको लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। एंड इसको सिक्योर बनाने के लिए एक पिन जो है वो भी रखा गया था, और वो पिन आप किसी को अगर बताएंगे तो आपका यूजर नेम के साथ वो इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अब लोगों का कंसर्न ये भी था कि अगर हम किसी को वो पिन बता रहे हैं तो फिर इससे अच्छा तो नंबर ही बता देते हैं, ये तो सेम बात ही हो गई। लेकिन इन सब कंसर्न्स के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के इस नए यूजर नेम फीचर को रोल आउट करने पर फिलहाल एक रोक लगा दी है या पॉज कर दिया है, बोलना ज्यादा सही रहेगा। एंड मेटा से जो है 3 दिन में इन्होंने जवाब भी मांगा था। अब देखिए, इसका सबसे मेजर रीजन जो है वो साइबर क्राइम और फ्रॉड का खतरा है। सो क्राइम और फ्रॉड, स्कैम्स, ये सब कैसे? गवर्नमेंट का मानना ये है कि बिना फोन नंबर शेयर किए यूजर नेम से अगर कोई चैट करता है, सो ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं, स्कैम के जो केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लोग जो है आइडेंटिटी थेफ्ट भी जो है कर सकते हैं, यानी स्कैमर्स जो है वो आसानी से किसी भी पब्लिक फिगर या किसी यू नो सरकारी एजेंसी का जो है एक नाम का यूजर नेम जो है या तो फिर उसके जैसा यूजर नेम लगाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो यूजर नेम वाला फीचर है ये उतना प्रोटेक्टेड नहीं है। लोग कई बार अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इस पर हमने कल भी शो पर बात करी थी लाइफ मस्ते में, लेकिन इतना डिटेल्स जो है वो अब सामने आए हैं। अब देखना ये है कि क्या इंडिया में यूजर नेम चल पाएंगे, या जिन लोगों ने फटाफट अपना नाम IMSR के रख लिया है उनका क्या होगा। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में इस गाने के उस पार। सो आप ये गाने एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: KEC.

मेरे भाई को मैंने कतर आने से मना कर दिया, उसे कतर बुलाने से मना कर दिया, तो उसने घर पे रखी हुई अपनी सारी चप्पलें जो है वो उल्टी रख दी, क्योंकि उसका मानना ये है कि अगर चप्पलें उल्टी रखी रहती हैं तो आपका विदेश जाने का योग बन जाता है, यानी आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। देखो अगर ऐसा हो रहा होता ना तो फिर वीजा ऑफिस के बाहर सिर्फ चप्पल ही पड़ी दिखती। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं लेकिन फन का तड़का मार के। अब देखिए यार, आज ना जैसे ये मेरे भाई का एक मिथ है, वैसे ही एक मिथ टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा हुआ है उसे हम बस्ट करने वाले हैं, यानी ये देखने वाले हैं कि ये जो मिथ हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताए गए हैं क्या ये सही है या नहीं है। अब देखिए, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि एयरप्लेन मोड को पे अगर अपने फोन को डाल दो और फिर फोन को चार्ज पे लगाओ तो फोन जल्दी चार्ज होता है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है, बस ये जानने वाले हैं। सो मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सही है। एयरप्लेन मोड पर अपने फ़ोन को डालने से GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ और सेल्यूलर नेटवर्क जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि फ़ोन की बैटरी जो है वो सर्च करने और सिग्नल रिसीव करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, जिससे चार्जिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, एयरप्लेन मोड को ऑन करने से आपके फ़ोन में बेटर सिग्नल, बेटर इंटरनेट चले या ना चले, लेकिन बैटरी जो है वो फास्ट चार्ज हो सकती है, ये तो पक्का हो गया है। सो ऐसे और फैक्ट जानने के लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Hey, can I have your number?
2: Why not? लिखो 10, 20, 30.
1: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा, क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
2: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
1: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर.

देखिए आपको भी कभी ना कभी अजीबोगरीब इंट्रूसिव थॉट्स जरूर आते होंगे। इंट्रूसिव थॉट्स वही होते हैं जो अजीबोगरीब चीजें हमें करने का कभी कभी मन कर जाता है। एंड जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के हम बात कर रहे हैं लेकिन मस्ती का फन का तड़का मार के। आपको भी कई बार ऐसा मन किया होगा ना कि ये जो कीबोर्ड की कीज हैं इन्हें जो है ए बी सी डी के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए, क्योंकि मेरा तो काफ़ी करता है। अब देखिए यार, ये जो QWERTY कीबोर्ड का डिजाइन है, ये आपकी टाइपिंग स्पीड को एक्चुअल में कम करने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, अब पुराने टाइपराइटर्स की जो है ये प्रॉब्लम थी कि जब लोग बहुत तेज टाइप करते थे ना तो उनकी मैकेनिकल कीज जो है वो आपस में फंस जाती थी, जिससे काफ़ी दिक्कत होती थी। सो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक बच्चे ने जो है कॉमन लेटर्स जैसे ए एस ई इनको दूर दूर रख दिया, ताकि लोग जो है थोड़ा धीरे टाइप करें एंड की मतलब जो टाइपराइटर है उसकी कीज जो है वो खराब ना हो। अब देखिए ये एक बार जो किया गया कीबोर्ड के साथ तो फिर ये फिक्स ही हो गया। सो देखिए कई बार जो है चीजें किसी लॉजिक के साथ शुरू कर दी जाती है लेकिन फिर वो प्रथा बन जाती है। मैं हूँ आपकी कसूस, थोड़ी सी देर में मुलाकात होगी, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Hi, this is A.R. Rahman. A.R. Rahman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: J-A-C-A.

देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये तो बताया था कि अब आप अपनी इंस्टाग्राम फीड को रीऑर्डर कर सकते हो, यानी अपने हिसाब से पोस्ट को, रील्स को ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आप अपनी स्पेशलिटी जो है वो ऊपर दिखा सको लोगों को। And जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुस एंड शो आपके लिए ले आई हूँ टेक टॉक, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन फन का तड़का मार के। सो आप देखिए व्हाट्सएप पे एक नया चैट टैब्स को रीऑर्डर करने का फीचर जो है वो आ चुका है, जिसे आप अब कस्टमाइज कर सकते हो। सो व्हाट्सएप का ये जो नया अपडेट है, इसमें यूजर्स को सबसे बड़ा जो हेडेक था वो अब दूर करने का मौका मिल रहा है, जहां पर अब आप अपने कस्टम चैट्स को, फिल्टर्स को या टैब्स को जो है, जैसे वो फैमिली फ्रेंड्स को, अपनी मर्जी से अप डाउन जो है या किसी भी तरीके से रीऑर्डर कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, जो टैब आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उसे अब आप सबसे ऊपर कर सकते हो, और ऐसी चैट जिसे आप इग्नोर करना चाहते हो आप उनको सबसे नीचे कर सकते हो, ताकि आपको जो आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं या चैट्स हैं वो आप जल्दी उनको ढूंढ सको एंड जल्दी एक्सेस कर सको। अच्छा फीचर है, आप अपने कुछ फेवरेट लोगों को सबसे ऊपर रख सकते हो, लेकिन देखना लड़ाई इस बारे में भी होगी, मम्मी कहेंगी मैं ऊपर क्यों नहीं, पापा कहेंगे मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ, और बाबू होगा सबसे ऊपर। मैं हूँ आपकी कसुस, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल मैप्स पे किसी जगह की लोकेशन डाली हो और आपको लोकेशन तक वो ले भी गया लेकिन उसके अपोजिट साइड पे अब आधा घंटा लग जाएगा एंट्रेंस ढूंढने में. हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं लेकिन फन का तड़का मार के. सो देखिए, गूगल मैप्स जो है अब बिल्डिंग के अंदर एंट्री पॉइंट तक आपको लेकर जाएगा. हाँ जी, एग्जैक्ट एंट्रेंस गाइड जो है वो अब आपको मिलेगी नए AI अपडेट के बाद. गूगल मैप सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं छोड़ेगा आपको बल्कि मॉल, रेलवे स्टेशन या बड़े अपार्टमेंट हो तो उसकी असली एंट्रेंस गेट तक जो है आपको नेविगेशन दिखाएगा. अब देखिए, पार्किंग में भी आपको हेल्प मिल सकती है. सो ये पार्किंग लॉट्स के एंट्री गेट्स को भी अलग से हाईलाइट करेगा ताकि गाड़ी जो है खड़ी करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो देखिए, जैसे जैसे AI जो है वो बेहतर होते जा रहा है, हमारी लाइफ आसान होती जा रही है लेकिन फिर भी हमें तो हमारी लाइफ टफ बनाने में मजा आता है. सो कुछ नए तरीके ढूंढ लेंगे हम जीवन को टफ बनाने के लिए. फिलहाल आपके लाइफ को ईजी बनाती हूँ, ईजी पीजी एक बढ़िया सा गाना आपको सुना देती हूँ. ये गाना सुन के आओ, फिर थोड़ी और बातचीत करेंगे. स्टे ट्यून्ड रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। हे, कैन आई हैव योर नंबर?
5: व्हाई नॉट, लिखो 10 20 30।
2: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10 20 30 June 29 से।
5: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
2: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए।
6: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
7: JEC

जब मम्मी कहती थी ना कि पता ही नहीं चला कितना वक्त कैसे निकल गया, बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए, तो मैं ना उनसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती, लेकिन अब कर पा रही हूँ क्योंकि आपसे बातचीत करते हुए वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड वीकेंड पे टेक टॉक शो पे हमारी बातचीत चल रही थी, जहाँ पे हमने बात करी टेक्नोलॉजी की, लेकिन फन का, मस्ती का तड़का मार के। लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, अपने वीकेंड को और ज़्यादा हैपनिंग बनाने का, क्योंकि आपसे बातचीत करके वाइब तो देखो अच्छी हो गई है, अब लाइफ को भी अच्छी जो है बना देती हूँ। थोड़े कपड़े वपड़े धोने बचे हैं, वो जाके घर पे कपड़े धोऊंगी। आप अपने वीकेंड को अच्छे से इंजॉय कीजिए। 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर दीजिए। कल आकर लाइव मस्त है शो में वो मैसेजेस पढ़ूंगी कि आपका वीकेंड आखिर कैसा रहा और आपको मेरा ये शो टेक टॉक कैसा लगा। बाकी आपके फीडबैक्स जो है वो मोर देन वेलकम है जी। सो बताइए क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, एंड तारीफ जो है वो आप मेरी कर सकते हैं 3311063 पर। बाकी radioolive.qa हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आकर भी आपको रेडियो ऑलिव के सभी आरजेस जो है वो मिल जाएंगे। सो आइए फॉलो कीजिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट हम बना रहे हैं, वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे याद करते रहना। बाय बाय, टाटा, मिस मी, हैप्पी वीकेंड।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।

Hi, good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM और ये है हैप्पी वीकेंड्स और यू नो फ्राइडे आते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिल में अलग अलग तरह के सवाल अलग अलग खुशियाँ अलग अलग इमोशंस आ जाते हैं. बाय द वे समटाइम थर्सडे को ही आ जाते हैं शाम होते होते. सो कल शाम को आई डिड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. मैंने दोस्तों के साथ जाकर एक नए कैफे में नया कुछ ट्राई किया. लेकिन इसी के साथ फ्राइडे इज ऑल अबाउट यू नो कि शाम को आना है आपसे बातें करनी है. सो वीकेंड ऑफिशियली कल ही शुरू हो चुका था. वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि फ्राइडे को ना सिटी का जो हार्ट बीट है वो चेंज हो जाता है. ऑफिस ईमेल्स की जगह फैमिली प्लान्स बन रहे होते हैं. ट्रैफिक भी थोड़ा सा खुश लग रहा होता है. हर कोई यू नो आराम से हर चीज़ कर रहा होता है. मतलब बाकी दिनों में तो ट्रैफिक में भी ऐसे ना अजीब सा गुस्सा होता है, लेकिन इस दिन ऐसा लगता है कि सब आराम से है और हर किसी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता है, फाइनली वीकेंड इज हियर. सो अगले 3 घंटे सिर्फ म्यूजिक नहीं, कॉन्वर्सेशंस होंगी, स्टोरीज होंगी और शायद ऐसी कुछ बातें जो आप घर लेकर जाओगे. तो बताइए कि आज आप कहाँ पर ड्राइव करके जा रहे हो. थोड़ा नंबर तो आपको बताइए, 3311063. हो सकता है कि शो के बाद मैं भी वहीं पर मिल जाऊँ आपको. आपका वीकेंड किस चीज़ के बिना ना कंप्लीट नहीं होता. मेरा जैसे ग्रॉसरी के बिना नहीं होता. ग्रॉसरीज मस्ट, यू नो वीकेंड पे ये सब सॉर्ट करना मेरा पहला काम है. सो बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hey, can I have your number?
2: Why not? लिखो 10, 20, 30।
1: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा, क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से।
2: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
1: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी World class shopping experience. Doha, Qatar.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

एक वक्त था जब फोन नंबर याद रखना दोस्ती की निशानी होती थी। आज सच बताइए, मम्मी का नंबर याद है आपको, लेकिन बेस्ट फ्रेंड का बिल्कुल नहीं। शायद तो, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि अब व्हाट्सएप एक और नया चैप्टर लिखने जा रहा है। यूजर नेम्स, यस, मतलब फोन नंबर शेयर किए बिना भी आप नए किसी पर्सन से कॉन्टैक्ट कर पाओगे। यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ज़रूरी चीज़ के लिए, पिक्चर सेंड करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप पर किसी से कनेक्ट करना है, बट यू डोंट वांट टू शेयर योर नंबर। तो ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व होने जा रही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। सो टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग होती जा रही है भाई, प्राइवेसी बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि हम डिजिटली कनेक्ट ज़्यादा हो गए हैं या फिर पर्सनली अभी भी हम एक दूसरे के नंबर्स याद रख सकते हैं। बाय द वे, मुझे वो पहला हमारे घर का लैंडलाइन नंबर आज तक याद है। आपको कोई नंबर ऐसा याद है जो आप हमेशा डायल किया करते थे? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. रेडियो

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: भाई कल शाहरुख खान ने कुछ कहा है, अब कुछ कहा है तो आपको बताना तो पड़ेगा। What started as a dream turns into reality today, ये कल उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला था, मतलब एक्स पर। You are listening Radio Olive 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Happy Weekends। और बात हो रही है उनकी क्रिकेट टीम के नए स्टेडियम की, yes, जो अमेरिका में बनकर तैयार हो गया है। मुझे इस खबर से ज्यादा वो ना लाइन पसंद आई, क्योंकि सपने ना कभी ओवरनाइट कंप्लीट नहीं होते यार, उनमें ना हजारों दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और फिर भी यू नो कभी कभी ऐसा लगता है ये हो भी पाएगा कि नहीं। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत मांगते हैं, शायद इसीलिए जब सपना पूरा होता है तो बिल्डिंग नहीं कहानी खड़ी हो जाती है। सो आपका कौन सा सपना है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है और आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये खत्म होगा और यू विल हैव दैट यू नो प्राउड मोमेंट कि यार मेरा ये सपना तो कंप्लीट हुआ। बाय द वे मुझे ना घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे लगता है मैं कब ऐसा कर पाऊंगी कि एटलीस्ट मैं 6-8 महीने में एक ट्रिप कर पाऊं और बोल पाऊं कि यार ये मैंने खुद से किया है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: This week on Executive Lens.
5: Executive Lens.
4: Only on Radio Olive 106.3 FM.
6: But how do you see the resurgence of travel from this specific incident?
7: Well, I think as you know, our industry is very resilient. Travel is always known to bounce back. And if you look at COVID, for example, it took a little time, but then once COVID was over, people started traveling again, and they actually started traveling more than they used to travel earlier. So that's how I think travel, people can't stay away from it. It's just not a necessity, but then I think it is becoming a part of a human system, psychology and habit that they have to take at least one travel per year. So I think things will definitely bounce back even in this current situation. We're expecting that things to settle down, whatever is happening around the world. We only hope that things settle down sooner and people come back to doing what they are good at doing. And also let us as travel agents do what we are good at doing, exactly. Letting people travel.
6: Yes, and giving them a really good experience.
7: Absolutely.
6: It's beautiful. Executive.
4: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m. Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.
8: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
9: Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न. अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो देयर्स मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म और वीकेंड का रिश्ता ना बिल्कुल चाय और पकौड़े जैसा है, मतलब कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, बिल्कुल वैसे ही रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन प्रॉब्लम मूवी देखने की नहीं है, चूज करने की है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। भाई फ्राइडे का दिन है तो मूवी और ओटीटी की तो बात होगी। पिछले हफ्ते वेलकम टू जंगल रिलीज हुई थी, जैसे ही रिलीज हुई भाई मैंने कहा कि मैं नहीं देखने जाऊंगी, बट मुझे कोई एक इंसान जबरदस्ती उस मूवी को दिखाने ले गया, बट मुझे उसको देख के बिल्कुल गिल्ट नहीं हुआ। सो समटाइम्स ना ऐसी मूवीज देख लेनी चाहिए। सो ऐसे ओटीटी पर बात करूं तो आज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर पूरे हफ्ते का स्ट्रेस रिलीज करना है तो कॉमेडी देखिए, अगर दिमाग को चैलेंज देना है तो थ्रिलर देखिए, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो फील गुड ड्रामा इज गुड फॉर यू। अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो ट्रू स्टोरी उठा लीजिए। वैसे आप मूवी मूड से चूज करते हो या एक्टर से? मैं अगर बात करूं अपनी तो ट्रस्ट मी मैं एक्टर से चूज करती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ये है तो थोड़ा फन होगा। बाय द वे आप मुझे अपनी कहानी बताइए कि आप मूवी चूज करने से पहले क्या देखते हो। 3311106 इज माय नंबर। ये है फ्राइडे और फ्राइडे को आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पर हैप्पी वीकेंड्स।

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मुस्कान है आपके साथ और आज है फ्राइडे। यस, एंड वी आर डूइंग हैप्पी वीकेंड्स। कभी नोटिस किया है, बचपन की हजार बातें भूल जाते हैं लेकिन मम्मी पापा की एक लाइन जिंदगी भर याद रहती है। सो मैं तुम पर प्राउड हूँ, ये आपने कभी सुना है अपने घर वालों से? मतलब इसे सुनने के लिए ना हम तरस जाते थे, कितना मेहनत करते थे। और कभी कभी यू नो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और सिर्फ एक सेंटेंस पूरा कॉन्फिडेंस बिगाड़ या बना देता था, इनसिक्योरिटी भी ले आता था। पेरेंटिंग गिफ्ट्स से तो आती नहीं है, वर्ड से याद रहती है हमेशा। आज के पेरेंट्स आप देखोगे कितने जेंटल पेरेंटिंग की तरफ जा रहे हैं। एंड आई वॉज वंडरिंग, जब भी मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि बच्चे बिल्कुल ऐसे ताबातोड़ हरकतें करते हैं, लेकिन स्टिल जो पेरेंट्स हैं दे आर बिलीविंग इन जेंटल पेरेंटिंग। और हमारे टाइम पे ना इतनी सारी चीज़ें होती थी, मतलब अगर आपने कुछ गलत किया और आपको पकड़ के चांटा पड़ता था सीधे। सो देखिए आज की और पुरानी पेरेंटिंग में कितना डिफरेंस है, और वर्ड से ही पेरेंटिंग भाई याद रहती है। सो आज घर फोन करिए और बिना किसी रीज़न के बस इतना बोलिए कि थैंक यू, शायद वो सबसे ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन हो। और यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे उतना समझाया नहीं होता, उतना यू नो हर चीज़ के ऊपर टोका नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, और स्टे ट्यून्ड, ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

यू नो एवरी फ्राइडे वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई लोग पूरे 5 दिन बकेट लिस्ट बनाते हैं फॉर फ्राइडे सैटरडे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. वीकेंड सिर्फ मॉल जाने के नाम नहीं होता. कभी ओल्ड दोहा पोर्ट की हवा महसूस कीजिए, कभी सूक पाकिफ की गलियों में बिना डेस्टिनेशन के वॉक कीजिए, या सनसेट देखने किसी बीच पर चले जाइए. यू नो हम अक्सर हॉलीडे का वेट कर रहे होते हैं और अपने अच्छे मौसम आने के लिए वेट करते हैं और अपने ही सिटी को, ब्यूटीफुल कॉर्नर्स को मिस कर देते हैं. जब मैं दोहा आई थी तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई मॉल तो ठीक है, एक आध दो बार चले जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, पर ये जो छोटी छोटी जगह है ना, ये जाके एक्सप्लोर करेंगे. एंड मुझे पर्सनली सूक वाकिफ जाना या फिर पार्क्स जाना या फिर ओल्ड दोहा पोर्ट जाना, ये सब बहुत पसंद है. सो चैलेंज ये है कि इस वीकेंड कदर की एक नई जगह डिस्कवर कीजिए और हो सकता है कि वो आपकी फेवरेट मेमोरी बन जाए. बाय द वे, अगर ऐसी कोई बकेट लिस्ट आपने बना रखी है तो बताइए मुझे 3311063 पर. हो सकता है मेरी भी वही लिस्ट में नाम हो. सो साथ में भी जा सकते हैं हम. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Hey, can I have your number?
2: Why not? लिखो 10, 20, 30.
1: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा, क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29th से.
2: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक.

भाई ऐसा होता है कि जैसे ही संडे आता है, नया वीक स्टार्ट होता है, सारी चीजें यू नो बहुत डिफिकल्ट और लेजी लगती है। मंडे आते आते चीजें रूटीन में आती है। सो एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि फ्राइडे को सिर्फ वीकेंड नहीं आता, हमारा ब्रेन भी बहुत खुश हो जाता है ऑटोमेटिकली। साइंटिस्ट कहते हैं कि एंटिसिपेशन भी हैप्पीनेस क्रिएट करता है।

मतलब वीकेंड शुरू होने से पहले ही हमारा मूड बेटर हो जाता है, यानी कि थर्सडे इवनिंग। शायद इसीलिए फ्राइडे इवनिंग की जो चाय है वो भी ज्यादा टेस्टी लगती है और गाने भी। सो ऐसे ही और भी सुपरहिट गाने लेकर मुस्कान आ चुकी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। बाय द वे, आजकल जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो आसपास मुझे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं एंड आई फील कि यार ये सब बहुत मज़ेदार हैं कि हम घर बैठे या फिर ऑफिस में बैठे सबकी लाइफ देख पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं। सो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों के यू नो व्लॉग्स देखने में। और अगर आप भी व्लॉग्स बनाते हैं तो मुझे फटाफट से बताइए 3311106 पर व्हाट्सएप करके कि किस नाम से आपका इंस्टाग्राम है। आई विल फॉर श्योर फॉलो यू ऑल्सो। सो मैं ये सोच रही थी कि जब आप व्लॉग्स बनाते हो तो उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। पर जो लोग बहुत मन से व्लॉग्स बनाते हैं ना, अपनी दिन की पूरी बातें बताते हैं कि यार फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे ऑफ होता है, वी डू ऑल दिस थिंग्स और ग्रॉसरी कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है फिल्टर्स नहीं है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: गानों के साथ या happiness बढ़ रही है
2: क्योंकि happiness is contagious.
0: Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas. इस खेल में player player नहीं warrior कहलाते हैं. यहाँ हर कोल पे adrenaline rush हाई होता है.
3: Over the top of Donnarumma!
0: यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव.
4: In association with
0: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
5: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
0: your trusted remittance partner.

लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI. सिर्फ रोबोट्स नहीं है, आज जब गूगल आपको रूट सजेस्ट करता है या फिर कोई यू नो चैनल आपको गाना सजेस्ट करता है या फोन कैमरा परफेक्ट फोटो चूज करता है, वहां भी AI ही काम कर रहा होता है जहां हमें दिख नहीं रहा होता. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स. भाई AI इज एवरीवेयर, मतलब मैं जहां भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ मुझे लगता है यार हम खुद से कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं. मान लो आप YouTube पे कोई शो देख रहे हो, कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, उसके बाद वही सजेशन आने लग जाते हैं, दैट इज ऑल्सो AI. सो बेसिकली अब जो धीरे धीरे हमारा पॉकेट है उसमें भी AI आ चुका है. कैसे? बस सवाल इतना है कि टेक्नोलॉजी हमें टाइम दे रही है या हम उसको, ये समझना अब डिफिकल्ट हो गया है. सो बताइए मुझे 3311063 पर कि आपको लगता है कि यार ये काम आपने नहीं सोचा था कि AI कर सकता है, बट AI इज डूइंग एंड डूइंग गुड ऑल्सो. 3311063 इज माई नंबर. ये है हैप्पी वीकेंड्स, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार कुछ रील्स देखती हूँ, उसके बाद कुछ अच्छा कंटेंट देखूंगी, बट देन एक 30 सेकंड की रील देखते देखते कब 30 मिनट और एक घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM एंड दिस इज वीकेंड, फ्राइडे का दिन है और बहुत ही अमेजिंग दिन है। सो एक 30 सेकंड की रील हम पूरी देख लेते हैं, लेकिन एक 3 घंटे की मूवी के लिए बोलते हैं यार टाइम नहीं है। और स्ट्रेंज है ना, शायद प्रॉब्लम टाइम की है ही नहीं, अटेंशन की है, क्योंकि हम जब रील्स देखने बैठते हैं घंटों फोन पे निकाल देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है मैं सीधे इंस्टाग्राम से ट्विटर यानी कि वो एक्स पे चली जाती हूँ, एक्स से सीधे मैं फेसबुक पर आ जाती हूँ, और ये करते करते कब एक दो घंटे निकल जाते हैं सच्ची बिल्कुल पता नहीं चलता, बहुत स्ट्रेंज है ये। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और इस टाइम पर सुन रहे हैं आप हैप्पी वीकेंड्स। सो प्रॉब्लम पता है क्या है, अटेंशन। लेकिन फिर भी जब अच्छी स्टोरी मिलती है हम बिंज वॉच कर लेते हैं, इसका मतलब स्टोरीज कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, वो बस स्टोरी टेलिंग जो है वो बदल गई है। हो सकता है कि आपको कभी कभी किसी की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती हो, कभी कभी बिल्कुल अच्छी ना लगती हो। तो आप मुझे बताइए कि आप रील्स देखना प्रेफर करते हैं या फिर कोई अच्छा बिंज वॉच करके मूवी या सीरीज। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट यू नो सम इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें इमेजिन कीजिए आपको वीकेंड मिल गया है, लेकिन एक कंडीशन है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, बीच या माउंटेन्स, राइट? अब कतर में तो यहाँ पे इतने सारे बीचेस हैं, हर वीकेंड यू नो वी ट्राई कि यार चलो महीने में एक वीकेंड ऐसा हो जो हम बीच पर जाएं, लेट नाइट ड्राइव करें, या घर की बालकनी में बारिश और यू नो कुछ अच्छा गर्म गर्म इंजॉय करें. ऑल्दो कतर में बारिश इंजॉय करना इज़ वेरी रेयर. सो बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको ऑप्शन में अगर मिलें, लाइक बीच, माउंटेन्स, लॉन्ग ड्राइव, या कोई बारिश और घर की बालकनी, या फिर कोई लग्जरी स्टेकेशन, तो आप अपना फेवरेट यू नो क्या चूज़ करोगे, या फिर घर में बैठ के ब्लैंकेट और नेटफ्लिक्स? सो रिसर्च कहती है कि हम जो भी चूज़ करते हैं वो सिर्फ प्रेफरेंस नहीं होता, वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में एक बहुत कुछ कहता है. जैसे कि मुझे यूजुअली वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं पसंद, और अगर पसंद भी है तो वो सिर्फ इवनिंग टाइम पे. मुझे लगता है कि यार दिन में ना मैं वीकेंड्स पे घर पे रहूं, कोई जल्दी ना हो, कोई तैयार होने की हड़बड़ ना हो. सो आप मुझे बताइए कि आप वीकेंड्स पे कैसे यू नो अपना वीकेंड स्पेंड करना पसंद करते हैं. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली, ना ही बोलूंगी कि सुबह 5 बजे उठ जाइए, लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी. बस एक छोटा सा चैलेंज है जो आपको मानना चाहिए. एक्चुअली यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. ये है हैप्पी वीकेंड एंड बिलीव मी, ये चैलेंज शायद आपका वीकेंड ब्यूटिफुल बना देगा. सो आज या कल

सिर्फ 20 मिनट के लिए फोन साइड पर रखिए और किसी अपने के साथ बैठिए। आई नो मतलब वीकेंड पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि फोन साइड में रखा जाए, पर कई सारे लोग होते हैं जो वीकेंड को एक्चुअली सिर्फ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या पेरेंट्स के साथ ही मनाना पसंद करते हैं। सो आई विल से कि रिसर्च कहती है कि जेन्युइन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम करते हैं और नेचुरली बहुत आपको खुश रखते हैं। सो हम सोचते हैं कि हमें वेकेशन चाहिए, कभी कभी हम सिर्फ कॉन्वर्सेशन से ही यू नो खुश हो जाते हैं। सो एक्सेप्ट चैलेंज और मान कर देखिए, और अगर आप ये कर लो ना तो बस मुझे एक बार व्हाट्सएप पे डन भेज देना। 3311063 इज माय नंबर। और अगर आपने ये कर रखा है इस वीकेंड ऑलरेडी तो फटाफट से मैसेज कीजिए और बताइए मुझे सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव।
2: In association with
1: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.
4: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
0: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: करते।
1: और बताइए क्या चल रहा है भाई। आज की फ्राइडे इवनिंग यहीं तक है मेरी और आपकी, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। एक राइटर से किसी ने पूछा था कि लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी कौन सी होती है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो प्लान नहीं की जाती। और सोचिए सच भी तो यही है। सबसे अच्छी मेमोरी कब बनती है? जब भी अचानक से कोई रोड ट्रिप बन जाए, कभी बिना फ़ोन किए आपके दोस्त आपके घर के नीचे आ जाए और आपको चाय के लिए ले जाए, कभी किसी पुराने दोस्त का अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाए, कभी फैमिली के साथ वो डिनर जहाँ पर किसी ने टच ही नहीं किया हो। इसीलिए इस वीकेंड हर मैं आपसे यही बात कहूंगी कि हर मिनट को स्केड्यूल मत कीजिए, थोड़ी सी जगह सरप्राइज के लिए भी छोड़िए, क्योंकि लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर वही होता है कभी कभी बिना प्लानिंग का। मैं हूं मुस्कान। अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। अपने फ्राइडे को अच्छे से इंजॉय कीजिए। वीकेंड का असली लग्जरी एक्सपेंसिव प्लान जो है वो यही है कि कोई प्लान नहीं है, बल्कि वो लोग होते हैं जिनके साथ आप वो वक्त शेयर करते हो। सो इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव फॉर नाउ। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

बिंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग। Radio Olive 106.3

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।